0: स्वास्थ्य गर्नु
1: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9800236460
2: आग लागि हुन नदिन सधैँ चनाखो बनाऊ खाना पकाइसकेपछि आगो ग्यास चुलो स्टोभ वा हिटर निभाऊ सिलिन्डरको रेगुलेटर पाइप वा चुलोबाट ग्यास लिक भए नभएको यकिन गरौं ग्यासको गन्ध आए व्यवस्था नगरौं सलाई लाइटर बाल बालिकाले भेट्याउने ठाउँमा नराखौं दाउरा बालेर खाना पकाइसकेपछि पानी छ्यापेर आगो निभाऊ चुरोट तमाखु चिलिम सुल्पा नखाऊ खाएमा आगो राम्ररी निभाऊ बिजुलीका तार प्लग स्विच वा वायरिङ ठिक अवस्थामा भए नभएको जाँच गरौं घर बस्ती नजिकै पोखरी ट्याङ्की वा अन्य कुनै तरिकाले पानीको जोहो गरिराखौं आग लागिजन्य विपदबाट बस्न चनाखो बनाऊ हावाहुरीबाट हुने क्षति कम गर्न पूर्व तयारी एवं सतर्कता अपनाऊ लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृह मन्त्रालय राप्ती उपत्यका दिउखुरी नेपाल
3: डेंगू से बचे की खंती मच्छर के काटे से बच भी सर्वोत्तम उपाय हुए पूरा शरीर ढके वाला कपड़ा पहना जाए सूते के समय मच्छर से बचे खंती मच्छरदानी के प्रयोग करा जाए घर के आसपास और खेत बाड़ी में काम करे के समय मच्छर के काटे से बचा जाए झाल और दरवाजा में जाली लगाई के बंद करा जाए मच्छर उत्पन्न न हुए देख लिए घर के आसपास सफा रखा जाए और पानी जमे के न देवा जाए अचानक बुखार और ज्यादा सरदर्द भय में तुरंत नजीक के स्वास्थ्य संस्था या अस्पताल में जचावा जाए
4: अनुरोध लुम्बिनी प्रदेश सरकार गृह मन्त्रालय राप्ती उपत्यका दिउखुरी नेपाल
5: लुम्बिनी शान्तिको आवाज रेडियो लुम्बिनी।